ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਘੜਘੜ ਵਿਆਪਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਧਰਨ ਮਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਬੰਤਿਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਖੁੰਟ ਦਹਿ ਜਿਸ ਸਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੀਅ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਮੈਂ ਏਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲਾ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਤਾਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਉਤਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਬ੍ਰਹਮ ਸੰਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸਤਰਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੁਭਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਮੋਹੀ ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਹਿਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ ਕਮਨ ਕਟਕਮ ਕਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰ ਗਜ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਰਪੂਤ ਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਨਾ ਪੇ ਖਨਾਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਖਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸਾ ਪੀ ਸੁਨਾ ਆਮਨ ਜਾਨ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਨੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹਿ ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਈ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ ਆਪ ਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਚ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਮ ਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਓ ਧਨਵੰਤ ਕਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਗਜ ਸਿਧੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਜਨ ਅਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਹੋ ਜਨ ਕੇ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾ ਹੋ ਆ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸੋਗ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਕ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸਨ ਤਿਆਗਿਓ ਤਰੰਗ ਸੰਜਨਾ ਕੀ ਤੁਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾ ਸੰਗ ਪਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਟ ਨਿਵਾਰੋ ਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤਵਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉੱਤਮ ਸਰੋ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀ ਕਲਾਰ ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਦਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋ ਕੇ ਨਿਸਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜਾ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਦ ਵਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਨਿਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ ਪ੍ਰਗੜੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਪਏ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾ ਸੰਗਲੈਨ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆ ਪ੍ਰਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਹੋਤ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹਰ ਤਨ ਖਾੜ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮੰਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲੈ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਪਚੀਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਦਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੈ ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਤਿੱਤੀ ਗੋੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਕਿਉਂ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਲ ਤਲ ਮੈ ਯਲ ਪੂਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਅਨੇਕ ਪਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪੌੜੀ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਤਿਆਏ ਗੁਣ ਗੋਬੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸਰਨ ਪ੍ਰਯੋ ਹਰਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੋਗ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਦਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਂ ਸਿਮਰ ਸੁਨੇ ਬੋਬਿਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤਿ ਸੁਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਹੀ ਮਿਲੈ
नानक हर गुण गाए गोविंद जस कहिए हर नीत मिल पजिया साध संग मेरे मीत राहो। श्लोक करो वंदना एक बार सन प्रवर आए प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाव मिटाए पोड़ी दुतिया दुर मधुर कर गुर सेवा कर नीत राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत मरण मिटे जीवन मिले बिन सैल रगल क्लेश आत जाओ गोविंद बजाओ पाव भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिर हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे सात सा भगवंत उठत बैठत हर पजाओ साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म से चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोए नानक संत मल पे जिन मन वस्या सोए पोड़ी तृतीया त्रागुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुरग प्रम त्यो कणो सदा संगारे मीच हर सुख सहसा संसार हो करत बिहाये जिनकी है तसे न जानी चितवे अनेक उपाय आद व्याद बे उपाद रस कभू न टूटे पाप टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन थनी न बुझा प्रताप मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास कर कृपा प्रभ राख लो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगर सोए जिन तजा अभिमान चार पदार्थ अस्थिर भजना न कर नाम पोड़ी चतुर चारे बेद सुन सोद्यो तत विचार सर्व खेल खेम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवार है दुख हर है टूटे अनेक क्लेश मी छुटे जमते छुटे हर कीर्तन प्रवेश पोबिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दार द पवित्रता नासे नाम धार सुंदर मुंजन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक सादरवाल। श्लोक पंच विकार मन मह बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच पर धानते जय मान्यो पर पंच कुसम बास वो रंकणो सब मिथ्या बलबंच न जापे न बूझिए न खचकत विचार स्वाद मोहरस बेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण वो जोन प्रमण कीने कर्मानेक रचनहार न सिमरियो मन विचार विवेक पाप भगत भगवान संग माया लित नरंच नानक बिरले पाई है जो न रहे परपंच। श्लोक खर शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सोहेत गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पोड़ी खस्तम खर शास्त्र कहे सिमरत कथे अनेक उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर्ष्यो बीते भक्त रचे भगवंत मोहमान प्रम बिंस्यो पाई सरन दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल ला मिला तो टाहिर साध संग लिवलाए खाट खजाना गुण निधरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतो किए एक सो लिवलाए पोड़ी सत सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संसंगत में पाई है अंत न पारावार आप तो जो गोविंद पजो सन परो हर राय दुख हरे पल जल तरह मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपै सफल जन्म प्रवाण अंतर बाहर सदा संग करने हर पछाण सो जा साजन सो सका साजन सो सका मीत जो हर कीमत दे नानक तिस बलिहारणे हर नाम जपे। श्लोक आठ पैर गुण गाइये तजिए अमर जंजाल जम कंकर जो न सके नानक प्रभु दयाल पोड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवर प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल तरम पवित्र स्नान सब मैं ऊंच विशेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जब तरिये नानक नाम हर रंग। श्लोक नारायण न सिमरियो मोह स्वाद विकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरक अवतार पौड़ी नौमी नवे छिद्र अपवीत हर नाम न जपे करत विपरीत परत्रे रमे बके साध निंद करण सुनि हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उर्दर कहताई अगर न निवरे तिसना न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जद देखियो तसोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जपलीने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेकर साथ दयाल रसना गुण गावे बेअंत मन में चितवे पूर्ण भगवंत हस चरण संत टहल कमाइए नानक यो संजम प्रभ कृपा पाइये। श्लोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोविंद न जानी है नानक सब समाध पौड़ी
एकादशी निकट पेको हर राम इंद्री भस्कर सुनो हर राम हर नाम मन संतोख सब जी दिया इन विद व्रत संपूर्ण पया तावत मन राखे इकठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एओ तरम श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साथ कृपाल नानक प्रभ से मिल रहे बिनसे सकल जंजाल पोड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भक्त करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मंत्र तासा कीर्तन प्रवरंग कोमल बाणी सबको संतोख है पंचपू आत्मा हर नाम रसपोख है गुरपुरे ते एने चौपाइये नानक राम रमत फिर जो न आइये श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूर्ण होत न काम पति उदाहरण मन बसै नानक छुटे नाम पौड़ी त्रोदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन मन में आयो सुख सागर प्रभ निमग्न गायो हर्ख शोक का देह कर बाध्यो धीरव रोग माया असाध्यो दिनय विकार करत श्रम पायो नैनी नीच सुपन बरड़ायो हर बिसरत होवते हाल शरण नानक पुर प्रभ पुरख दयाल श्लोक चार कुंट चौधे पवन सगल होवते हाल शरण नानक प्रभ पुरख चार कुंट चौधे पवन सगल व्यापत राम नानक ऊन देखिया पूर्णता के काम पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण आकाश समय प्रपेक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तय बसे ध्यान सुखम अस्तूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पह मिटे नानक बिनसी चिंद पोड़ी अमावस आत्म सुखी पे संतोख दिया गुरुदेव मंत्र सीता सात सहज लागा प्रभ की सेव टूटे बंधन भो विकार सफल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम शरण गई पार ब्रह्म की मिट्या आवागमन आप तरह कुटुंब सियो गुण गोविंद प्रवरवन हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम गुरपुरे थे पाया नानक सुख विश्राम श्लोक पूरन कबो न ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न काट पौड़ी पूर्णमा पूरन प्रभ एक करण करण करण करण सम्राथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जाका हत गुण निदान गोविंद गुर किया जाका होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वर सब जानन हार संत साई शरण जोग आठ पैर नमस्कार अकत कथा न बूझिए सिमरो हर के चरण पति धारा नाथ नाथ नानक प्रभ की शरण श्लोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गई हराए मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाये पोड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार किलबे काटे होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हल्त पल्त मुख उजला न पोहे तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन पजिया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद बैस उदरे सिमर चंडाल जिन जाने हो प्रभ अपना नानक तिसे रवाल गोड़ी की वार महल्ला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महल्ला चौथा सदगुर पुरख दयाल है जिसने समत सब कोए एक दृष्ट कर देख दा मन पावनी ते सिद्ध होए सदगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महल्ला चौथा हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार ला हर तन खट्टिया गुरमुख सब विचार हो मैं मैल बिख उतर है हर अमृत हर उतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जोतुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजन हार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच्चा है सच सच्चा गोसाई तू दिनों सब त्याई दी सब लग गए तेरी पाई तेरी सिर्फ सवाले स्वरूप है जिन की तिस पार लगाई गुरमुखा नो फल पायदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहेबा वड़ी तेरी वडियाई श्लोक महला चौथा मिणनावे होर सलाना सब बोलन फिक्का साध मनो कंकार सलाह दे हो मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरे खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उभरे जब हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित्र हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हराया जिनी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तुझे वरदाता तू है निरंजना तू है सच मेरा मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सचनाया श्लोक महला चौथा
मन अंतरों में रोग है प्रम फूले मन मुख दुर्जना नानक राग गवाए मेरे सदगुरु साधु सजना। महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यो गुरमुख हर गुणतास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पोड़ी। तू करता पुरख गम है किसना तू बढ़िया तू जेवड़ होए सो आखिया है तू जे है तू है पढ़िया है। तू कट कट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़िया है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़िया है। तू करे सो सच्चे हो सी ता काय तकड़िया है। श्लोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पै लगन जन नानक कृपा तार प्रा सदगुर सुख वसन। महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की जो बोलन तिवे सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी। तू करता आप पुल है पुलन विच नाही तू करे सो सच्चे पला है गुर शब्द बुझाई। तू करण कारण समर्थ है तू जाको नाही तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्याही। सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब चढ़ाई। श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठ है सज्जन मेलिया जन नानक सुख सवन। महला चौथा सतगुर दाता दयाल है जिसने दया सदा होए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विट्टो तिस्टिया ना खोए सतगुर सबना दा भला मनाए दा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नु जे आको इच्छदा ते हा फल पाए कोए नानक करता सब कुछ जानदा जिद्दू किछ गुज्जा ना होए पौड़ी। जिसनो साहेब वड्डा करे सोई वड़ जानी जिस साहेब पावे तिस बक्सले सो साहेब मन पाणी। जे को तीरीस करे सो मूड़ जानी जिसनो सतगुर मेले से गुण रवे गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निरप्यो निर्वय निरंकार जिन जपिया एक मन एक चित तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरा राध्या तिन संत जना जयकार कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट विट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखण हार तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सृजन हार। महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंतु पाइन मुख आपे दे गिरास सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम त्याए तू सब किलवे कट्टे तास पोड़ी। तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चे पावे जो तो सच सलाह दे तिन चम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे कुड़ी हार पिछा सटियान कुड़ी हृदय कपट महा दुख पावे। मुँह काले कुड़ी आरिया कुड़ी हार कुड़ो हो जावे। श्लोक महला चौथा सतगुर धरती धर्म है तिस विजया को बीजे ते हा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। उना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सची पहनाए एक ना अंदर खोट नित खोट कमावे ओ जे आ बीजे ते हा फल खाए। जा सतगुर सराव नजर कर देखे सुहाव गिर सब उगड़ आए ओ जे आ चितवे नित ते हा पायन ओ ते हो जे ते वजाए। नानक धोई सिरे खसम आपे वरते नित कर देखे चल सबाए। महला चौथा एक मन एक वर्तदा जद लगे सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे करवत होवे साई खाए। बिन सतगुर सो जी ना पवे अंकार न विचो जाए अंकारिया नो दुख भुख है हत्ते कर कर मंगाए। कूठ गीत कुची ना रहे मुलम्मा पाजला जाए जिस होवे पूरब लिखिया ते सतगुर मिले प्रभ आए। जो लोहा पारस पेटिए मिल संगत स्वर्ण हो जाए जन नानक के प्रभ तू तणी जो पावे तिवे चलाए पोड़ी। जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगण शब्द जलाए। ओगण विकण पलरी जिस देश सच्चे पाए बलिहारी गुर अपने जिन ओगण मेट गुण प्रगटी आए। वड़ी वडे आई वडे की गुर मुखा लाए। श्लोक महला चौथा सतगुरु च वड़ी वडे आई जो अंदिन हर हर नाम त्यावे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नाम ही सतावे। हर नाम तान हर नाम दिबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुर मूरत सो मन इच्छे फल पावे। जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार देवावे फिर ओ वेला ओ साथ न आवे ओ अपना बीजा आपे खावे। नरक कोर मो काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरह जा हर हर नाम त्यावे। हर बाता आख सुनाए नानक हर हर करते वे पावे। महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओ मनमुख ज्ञान मुठ्ठा बिख माया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे
अणहोदे झगड़े दए उसने गल पाया वो गल फरोसी करे बो तेरी उसका बोलिया किसा ना पाया वो कर कर हंडे जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए से ओलिप्तो वरते उसका पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नहीं पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आख सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुरसिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वडा है सो ले ज सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याय दा सच सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत किते बस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तेर अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके ओ बोले किसे न पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप कृष्ण ही लाया गुरमुख बख्श जमाइन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने प्रेनो हर पावे सो खेत जमाया गुरसिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल पा हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा कृष्णित कुरकदा हर करते मार कढाया कृषाणी जम्मी पाओ कर हर बोहल बक्स जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिस सतगुर पुरख थ्याया जन नानक नाम अराध्या अब तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लालच अट्टिया मन मुख हो रे गल्ला राती उगे दबिया नवे सोत सब टिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पल्ला जोरा दा आख्या पुरख माव दे से अपवित अमेद खल्ला काम व्यापक सुध नर से जोरा पुचल्ला सतगुर के आखे जो चले सो सतपुरख पल पल्ला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिल्ला सब तेरी बंत बनावणी नानक पल पल्ला पौड़ी तू वे परवाह थाव है अतुल क्यों तुलिये सेवड़ पागी जे तुद त्याय दे जिन सतगुर मिलिये सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुर बाणी बणिए सतगुर की रीसे होर कच्छ बिच बोल दे से कुड़ियार कुड़े चढ़ पड़ी है ओना अंदर होर मुख होर है बिख माया नो चख मर दे कड़ी है श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन सोए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार चोट ओए आपे सच्चे वख कट जजमा ले सचियार सिख बै सतगुर पास कालन सतगुर सचियार सिख बै सतगुर पास कालन कुड़ियार न लभनी किथे थाए पाले जिना सतगुर का आख्या सुखावे नाई तिना ओ पलेरे फिरे दई गाले जिना अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचरक वे राइयन मन मुख बेताले सतगुरु नु मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरते अपनी वथना ले जन नानक इकना गुर मेल सुख देवे एक आपे वख कड्डे ठगवा लै महला चौथा जिना अंदर नाम निधान हर तिनके काज दया दे रास तिन चुकी मोताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख रहे साबास सा पासा सब हरका किया सब जन को आद करे रह रास गुरपुरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपुरे दान दिया हर ने चल नित बक्से चढ़े सवाया कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड्डा ता दाणा तू जेवड़ मैं होर को दिस न आवी तू है सुगड़ मेरे मन पाणा मोह कुटुंब दिस आवदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होर चित लाए दे से कुड़ियार कुड़ा तिन माणा नानक सच तय तू बिन सच्चे पच पच मुए अजाणा श्लोक महला चौथा अगो दे सत पाव न दिच्चे पिछो दे आख्या कम न आवे अद विच फिरे मन मुख विचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अप्यो पीवे शब्द गुर केरा सब काड़ा देसा परम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अंदिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख काए सो पलके उठर नाम त्यावे उदम करे पलके परबाती स्नान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब के लिए पाप दोख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बैद्या उठद्या हर नाम त्यावे जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर से गुरु मन पावे जिसने दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर से गुरु उपदेश सुनावे
जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपै अवरह नाम जपा वह पौड़ी। जो तू सच त्याय दे से विरले थोड़े, जो मन चित कराद दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याय दी से थाए पे जो साहेब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे से मुहे मर जमे कोड़े। ओ हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़े मुख कोले, मन खोटे दे विछोड़े। श्लोक महला चौथा, मल जुई परिया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वे मुख वे मुख है नो पाया, पास दे कोई बहन जगत में, घू पड़ सगवी मल्लाए मन मुख आया। पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया, उथे भी मुँह काला धो वे मुखा दा कराया। तड़ सुनिया सबद जगत विच पाई, वे मुख सुने नफरे पोली पौधी फावा, होए के उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया। हलत पलत दो वेगे नित पुखा कुके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बै आप कराया। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो साचे मार पचाया, ए अखर तिन आख्या जिन जगत सब उपाया। महला चौथा, साहेब जिसका नंगा भुखा होवे, तिसदा नफर कितों रज खाए। जे साहेब के करवत होवे, सो नफरे हथ आवे अणहोदी कितों पाए। जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगा ना कोई पौड़ी। नानक विचारे संत जान चरवाद वेद कहन दे, भगत मुखे ते बोल दे से वचन होवन दे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनन दे, सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खान दे। ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे, ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मन दे। जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे, वैर करे निर्वैर नाल तरम न्याय पचन दे। जो जो संत सरापिया से फिरे पवन दे, पेड़ मुंडाओ कट्टिया तिस डाल सुकन दे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याय दा वड्डी वडियाई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु खटे नाई, इक तिल किसे दी कटाई। सच साहेब सतगुरु के वल है, ता चक चक मरे सब लोकाई। निंदका के मुँह काले करे हर करता है आप वधाई। जो जो निंदक निंद करे त्यों त्यों नित्य चढ़े सवाई। जन नानक हर आराध्या तिन पैरी पायरी आण सब पाई। महला चौथा, सतगुर से ती गणत जे रखे, हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुटे, चकदा चकदा चढ़ पिया। नित पाव करे माया तन कारण, अगला तन भी उड़ गया। क्या वो खट्टे क्या वो खावे, जिस अंदर सहसा दुख पिया। निर्वैर नाल जे वैर चाहे, सब पाप जगदे का तन सिर लिया। उस अगे पिछे ढोई नाई, जिस अंदर निंदा मो अंब पिया। जे सोने नो ओ हथ पाए, ता खे उसे तीर गल रल गया। जे गुर की सरणी फिर ओ आवे, ता पिछले ओ गण बख्स लिया। जन नानक अंधे नाम त्याया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी, तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तू सच त्याय दे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। और अंदर सचमुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिनी गुरमुख सलाया, सच शब्द निशान। सच्चे सच्चे सेव दे तिन वारी सतगुर बाण। श्लोक महला चौथा, तुर मारे पूरे सतगुरु से, हुण सतगुर मारे। जे मिलन नो बो तेरा लोचिए, ना दे मिलन कर तारे। सत्संगत टोई ना लहन, विसंगत गुर विचारे। कोई जाए मिले हुण ओना नो, तिस मारे जम जंदारे। गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद किते कुड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हथे ना विचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, ते निंदक दुस्सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सवारे। जो इच्छे सो फल पाएसी, पुत्तन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे। सामने धान सतगुरु वेच, जिस अंदर हर उर तारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिख्या लिखत लिलारे। जन नानक मागे तूड़ तिन, जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत भी आपे आण। तिन को पैरी पाए डरिए, ता जे किच आप दुखी छे। सब सब करता अपनी कला वधाए। देखो पाई ए अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए। अपने भगता की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मुँह काले कराए। सतगुर की वड्याई नि चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता गुर
सतगुरु करी वसाए, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो, गुरु सिखो हर करता आप मोह कढाए, गुरु सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुरु का जयकार संसार सबद कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी, तू सच्चा साहिब आप है सच्चा हमारे, सच पूजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वण अंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन्म ले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखा रहे, श्लोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे न होवे होवी पल्ला, उस दे आखे कोई न लग गए नित उजाड़ी पुकारे खल्ला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे किता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोदी पराए, मोह खट न सके उसदा काला प्या, करम धरती शरीर कल युग विच जे आको बीजे ते आको खाए, गल्ला उपरत पावस ना होई विस्खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जे हा कोई करे ते हा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आख सुनाए, महला चौथा होदे पर तक गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मुफ फिक्के थुक थुक मोह पाई, जो सतगुरु फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेते लेते टहार फिराई, तिनकी भुख कदे ना उतरे नित भुखा भुख कुकाई, ओना दा आख्या को न सुने नित होले होल मराई, सतगुरु की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले रहदी खेदी सब खोदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिले तिस कुश्त उठाई, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चितलाही, तुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को नसकाई, नावे की वड्याई वडी है निसवाई चढ़े चढ़ाई, महला चौथा जे होंदे गुरु बटिकिया तिस जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निविया सब पैरी पिया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करा जिसके मस्तक हथ धरिया गुरु पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई निचड़े सवाई अपड़ को नसकोई, जन नानक हर करते आप बैठिकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई पोड़ी, काया को टपारे अंदर हटना ले गुरमुख सौदा ज्यो करे हर वस संभाले, नाम निदान हर वण जिए हीरे परवाले, विणकाया जे होर थै तन खोज दे से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाइये जो चाड़ मृग पाले, श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो ओखा जग में होया, नरक कोर दुख है ओते पकड़ ओ टोया, कूक पकार को ना सुने ओ ओखा ओखा होय होय रोया, उन हल्त पल सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बल्द कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किच तिद्दू किच गुजा ना होया, जैसा भी जे सोलने जे हा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम त्याए तू जप हर नाम सुख होया, महला चौथा वडपागिया सोहागणी जिन गुर मुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी, एव शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की भी ज्योत, घोज रतन विच लुकरे कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मनिया इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाए तू सच सच्चे सेवा तेरी होत, श्लोक महला चौथा सब रस तिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे, हर दर गए ते मुख उजले तिनको सब देखण जाए, जिन निरपयो नाम त्याया तिनको पो कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरे मिया जिनको तुर लिखिया आए, ते हर दर गए पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे, ओ आप तरे सब कुटुंब सियो तिन पिछे सब जगत छड़ाए, जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाए, महला चौथा सात अरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पे हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए, तन तन पिता तन तन कुल तन तन सुजननी जिन गुरु जनिया माए, तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, हर सतगुर में लहो दिया कर जन नानक तो वह पाए पौड़ी,
सर सच्चा सदगुरु अमर है जिस अंदर हर उठता रहा, सर सच्चा सदगुरु पुरख है जिन काम क्रोध भिख मारिया, जा डिठा पूरा सदगुरु ता अंदरों मन साधारिया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुंवारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सदगुरु मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्यासी, सो करे जे सदगुरु पावसी गुर पूरा करी वसाईसी, जिन अंदर नाम निधान है तिनका पोसो गवाईसी, जिन रखण को हर आप होए होर केती चक चक जायसी, जन नानक नाम त्याए तू हर हल्त पल छोड़ाईसी। महला चौथा, गुर सिखा कै मन पावदी गुर सदगुर की वडियाई, हर राखो पैज सदगुरु की निचड़े सवाई, गुर सदगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई, गुर सदगुर तान दिबाण हर तिन सब आन निवाई, जिन्नी डिठा मेरा सदगुरु पाओ कर तिनके सब पाप गवाई, हर धर गह ते मुख उजले पोसो बापाई, जन नानक मंगे तूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी, हो आख सलाई सिफत सच सच सच्चे की वडियाई, सालाई सच सलाह सच सच कीमत के न पाई, सच सच्चा रस जिनी चाख्या से तृप्त रहे आघाई, एव हरस ही जान दे जो गूंगे मिठियाई खाई, गुरपुरे हर प्रभ सेविया मन वजी वदाई। श्लोक महला चौथा, जिन्ना अंदर उमर थल से ही जान अंसूलिया, हर जाने से ही बिरो हो तिन विट्टो सद कुम कोलिया, हर मेलियो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विट्टो तल रोलिया, जो सिख गुर कार कमावे हो गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलू ले जोरते तिन पिन्नी हर रंग चोलिया, कर कृपा नानक मेल गुर पैसर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगणी प्रया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजिए मलहो में कड्डे तोए, सच वणन जे रंग सो सच सौदा होए, तोटा मूल न आवे लाह हर पावे सोए, नानक तिन सच वणन जिया जिन तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी, सालाई सच सलाणा सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसै सच सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अराध्या से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले, ओ आल पताल मोह बोल दे जो पीते मद मतवाले। श्लोक महला तीजा, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमे चित करे, पाणे चले सदगुरु कै ऐसा सद सिगार करे, सच्चा शब्द बतार है सदा सदा रावे, जो उबली मजीठे रंग गह गहा त्यो सच्चे नो जियो दे, रंग चुलुले अतरती सच्चे सो लगाने हो, कूड़ ठगी गुजी ना रह कूड़ मलम्मा प्लेट तरे हो, कूड़ी करन वड्याईया कूड़े सो लगाने हो, नानक सच्चा आप है आपे नजर करे। महला चौथा, सत्संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करे उपर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे हर नामे जग निस्तारिया, गुरु वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया सतगुरु विच गुर आपे तू सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे सतगुर को सिजन हारिया, कोई विछुड़ जाए सतगुर पासो तिसकाला मुँह जमक मारिया, तिस अगे पिछे टोई नाही गुरसिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उभरे जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हो मैं जगत भुलाया दुरमत लिखी बिख्या बिकार, सतगुर मिले त नदर होए मन मुखन दंदियार, नानक आपे मेले जिसो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सत सच्चे की सिर्फ सलाह है सो करे जिस अंदर पिजै, जिनी इक मन इक करा दिया तिनका कंध न कभू छिजै, तन तन पुरख सा भास है जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पावदा से मन सच्ची दर गह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आगे मन खोटे कूड़ कुड़ियारे, जागुर कहे उठो मेरे पाई बह जाए कुसर बगलारे, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते चुन कड्डे लद्दो वारे, ओए अगे पिछे बह मोप छपाइन ना रलनी खोटे आरे, ओना दा पक्षो उथे नाई जाए कूड़ लहन पे डारे, जे साकत नरखा वाइये लोचिए बे कड्डे मुख गुलारे, हर साकत से ती संग न करियो ओ मारे सिर जनहारे, जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरख गम है जिस अंदर हर उतारिया,
सदगुरु नो अपड़ कोई न सकी जिस वाल सृजन हारिया सदगुरु का खड़क संजो हर भक्त है जित काल कंटक मार विडारिया सदगुरु का रखन हारा हर आप है सदगुरु के पीछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवे पूरे सदगुरु का सो आप पावन हारे मारिया ए गल होवे हर दरगह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी ससुत्यास जिनी अराध्या जा उठे ता सचवे से विले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हो बलिहारी तिनको जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच

सच्चे के जन भक्त है सच सच्चा जिन्हें हरा दिया जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सचला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी सा दिया सच सच्चा सबदू वडा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नो सा भास है सच सच्चा से फला दिया। श्लोक महला चौथा। मानव प्राणी मुग्ध है नामहीन परमाए बिन गुर मनुआ ना टिके फिर जू नहीं पाए हर प्रभ आप दयाल हो है ता सतगुर मिलिया आए जन नानक नाम सलाहे तू जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा। गुरसालाई अपना भोबिद रंग सुबाए सतगुर से ती मन रता रखिया बंत बनाए जेवा सलाहे नरद जी हर प्रीतम चितलाए नानक नावे की मन भुख है मंत ते हरस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड़ियाइया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाइया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आइया सच गुरमुख जिनी सलाया तिना भुखा सब गवाइया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजे दिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विश गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा। माया तारी अत अन्ना बोला सब न सुनी बो रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योतिष पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी। तू करता सबके जानदा जो जिया अंदर वरता है तू करता आप अगणत है सब जग विच गणते गणता है सब कीता तेरा वर्तदा सब तेरी बनता है तू कट कट इक वर्तदा सत साहिब चलता है सतगुरु नो मिले सो हर मिले ना ही किस सह परता है। श्लोक महला चौथा। एह मनुआ दृढ़ कर रखिया है गुरमुख लाइया चित क्यों सास ग्रास में सारिया है बहद्या उड़द्या नित मरण जीवन की चिंता गई ए जुड़ा हर प्रभवास जो पावे तो रख तू जन नानक नाम बखस। मरण जीवन की चिंता गई ए जुड़ा हर प्रभु बस जो पावे तो रख तू जन नानक नाम बखस। महला तीजा। मनु को अंकारी महल न जाने खिना गे खिन पीछे सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर दर गैसी जे सतगुर का महल बिरला जाने सदा रह कर जोड़ अपनी कृपा करे हर मेरा नानक ले बहोड़ पौड़ी। सा सेवा कीती सफल है जिस सतगुर का मन मन्ने जा सतगुर का पाणा मन्या तिनी चढ़ी चवक गणवन्ने ए चाल निराली गुरमुखी गुर दीख्या सुन मन पिन्ने। श्लोक महला तीजा। जिन गुर गोप्या अपना तिस ठोर न ठाओ हलत पलत दो वे गए दरगे नाई थाओ ओ वेला हथ न आवी फिर सतगुर लग है पाए सतगुर की गणते कुसिए दुखे दुख विहाए सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए नानक दर्शन जिना वेखा लियन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा। मनमुख ज्ञान दुर्मत अंकारी अंतर क्रोध जुए मथारी कूड़ कुस्त ओ पाप कमावे क्या हो सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खु उजड़ पाए मनुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर पेटे थाई न पाए नानक प्रभु लिखिया कमाए। महल पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बहन सतगुरु पास उथे सच वर्तदा कुड़ियारा चित उदास ओए वाल छल कर चित कड दे फिर जाए बह कुड़ियारा पास विच सच्चे कूड़ न गड्डी मन वेखो को निर्जास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुरु पास। श्लोक महला पंजवा। रह दे खुद दे निंदक मारियन कर आपे आहर संत साई नानका वरते सब जाहर। महला पंजवा। मुंडो पुले मुंडते किथे पायन हथ तिन्ने मारे नानका जे करण करण समरथ। पौड़ी पंजवी। लहफाए राती तुरे प्रभ जाने प्राणी तके नार पराइया लुकंदर ठाणी संधी देन विखम थाए मिठा सद मद माणी करमी आपो अपनी आपे पछताणी अजराइल फरेस्ता तिल पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साका जे से ही परवान दूजा सेवन नानका से पचपच मुए अजान। महला पंजवा। ज्योतुर लिख्या लेख प्रमेट न जाए राम नाम तन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवी। नारायण लयाल ना ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप मित्या नित विसे चखे निंदा करदा पचमुआ विच दे ही पखे सच्चा साहिब मारिया कौन तिसनो रखे नानक तिसरनागति जो पुरख लखे। श्लोक महला पंजवा। नरक कोर बो दुख गणे अकित कणा का थान तिन प्रमारे नानका होए होए मुए हराम। महला पंजवा। अवखद सबे कीतियन निंदक का दारू नाहे आप बुलाए नानका पचपच जोनी।

ईश्वर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनु मोहणिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावण तुदनु रतनु उपाए तेरे।

सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन अर्गम अगम अपार सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे।

अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुक्त पय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज करदे करे, सब बैरण को आसंग रहे, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

त्रास निवर है, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री सुजू करे हो रक्षा, राख लियो मय राखण हारे, साहिब सन सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम्होपुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजु आवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी सुब कियो,

लेहु उबारी सर्ब ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता। श्री असुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांचत फल पावै सोई दुखनाथ से ब्यापत कोई अड़िल। सुने गुम यो याहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निगणत नर के रह अयोया की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सतरह सहस पणिजा अर्ध सहस मुन तीन गहजा भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपज्ञाने त्रिया चरित्रे मंत्री पुब संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अभिजो दोहरा। ना जान कर दास पर की जय कृपाया पार आप हाद राख मोहे मान क्रम बचन विचार। चौपाई मै नागनेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन गबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साओ

तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो मिसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है, करता तेरा सब कुछ है जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पन शब्द घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया, तुर गर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होवा तितकर अनहद वाजे, अनद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्र पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आभरपूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतुरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो ससंतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावै जे को पुंछै तिसका हुए उधारो, ए वस्त जी नह जाई नित नित रा गुरु धारो, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म।

ये अनत न काहू डोले राम मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदुड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदुड़िए मन

साध संगत जी बहुत वड्या भागा वाले हो, गुरु की कृपा है, साध संग जो तुम है मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। ये गुरु की कृपा हुई है, साध संगत दिया मोलक घड़िया प्राप्त हुई ने, सतगुरु जी की अमृत बाणी सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। मात गर्भ मैं आपन

बाजी कोई खेडदा है। जिस वेले सतगुरु महाराज ने माया द्वारे आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दो ही कुदरत साजिए कर आसन डठो चाहो। जिस वेले महाराज ने सृष्टि नू रचिया है जिवें कोई बाजी खेडदा है खेडा खेडदियां ने चौपड़ मारिया जांदा है। साहब जी कहिंदे जिहड़े चार जोग ने चौपड़ चला दिता है मेरे साहबाणी। ते इस तरह बाजी खेडदियां खेडदियां गरीब नवाज जी कृपा करदे ने जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा। ते जिन्हें जी जंत ने नदरां कीतियां होईयां ने ते इन्हां तों निरलेप हो के रजो तमो सतो तो मेरा वाहिगुरु निरलेप हो गया है। ये सतगुरु जी दे खेडां ने कौतक ने।

प्रगट पही सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड़ियाई। सतगुर सचे पातशाह धन गुरु नानक साहब का पहरा वे कल युग दे अंदर सत युग तै मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो अगर सैन को राज अब है भगते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमाए। आप सारे रब वर्गियां संगतां जुड़ियां बैठे गुरु दरबार विच गुरु चरणां नाल मन जोड़ के सतसंगत विचों अमोलक दातां दी प्राप्ति हुंदी है। सतसंगत दे विच पता नहीं केड़ी रूह केड़ा जीव गुरु दा प्यारा जुड़िया होया बैठा उहदे सदके साडे सारयां दी झोली खैर पै जानी है। गज के आखो श्री वाह वाह। महापुरश धन बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वाले बचन करिया करदे सन कि भाई गुरु नानक दी उस्तत करिया करो जे निंदा चुगली ते भी मन करे ते अपनी कर लिया करो ते उस्तत गुरु नानक दी करेगा गुरु नानक नूं वड्डा वड्डा करके वड्याएगा गुरु नानक तैनू भी वड्डा बना देगा। आखो श्री वाह। प्यारी सात संगत मैनूं इक बचन याद आया महापुरश किवें जोड़दे हन जीवां नूं गुरु नानक दे चरणां नाल। साडे बजुर्ग भी विच शामिल सन अमृत वेले दा टाइम सी ते कलेरां वाले महापुरश बाबा ईश्वर सिंह जी खड़े सन किसे ने बेनती कीती किसे गुरमुख प्यारे ने सूझवान सियाणा बंदा सी सोझी वाला सी कहन लगा महाराज कि पंचम पातशाह ने एक बचन लिखिया है सुखमनी साहब दे विच बड़ा कठिन है। महापुरश कहन लगे केड़ा भाई कहन लगे जी मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सृष्ट साजना। महाराज बड़ी औखी घाटी है सारे संसार नूं सज्जन बनाउणा। बाबा जी मुस्करा के कहन लगे भाई सज्जना बड़ा सौखा कम है। आ देखो महापुरशां दी जुगती संगत विच आईए महापुरशां दी संगत करिए ते की प्राप्त हुंदा केड़ी जुगती प्राप्त हुंदी है। अज पल्ले बन के लै जायो बड़ी प्यारी जुगती है। महाराज कहन लगे भाई बड़ी सौखी गल है। महाराज वो किवें कहन लगे गुरु दी बाणी दे वचन पढ़िया कर कहन लगे एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात तू गुरु नानक नूं सज्जन बना ला तू गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द नाल प्यार पा ला सारा संसार तेरे नाल सज्जनता ही पा लेगा। गज के आखो श्री वाहे। ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बने आई ये दात कितों प्राप्त होनी है धन गुरु ग्रंथ साहब विच। बाबा जी बचन करया करते सन भाई गुरुआं दा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जेड़े सारे संसार दी पालना करते हैं दसा गुरुआं ने मत्था टेकिया गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरुआ दे गुरु ताई आख्या जांदा है। तो प्यारी सात संगत धन गुरु नानक पातशाह ने जदों सज्जन ठग नूं तारिया इतिहास बड़ा लंबा रोज सुनते तुसी बड़े सूझवान गुरु ज्ञानी इत्थे आउंदे हन ते मैं महापुरशां दे रसना तो एक बचन सुनिया कहन लगे जदों धन गुरु नानक पातशाह सज्जन ठग नूं तार के बाहर निकले ना ते मरदाना जी ने अगे होके मत्था टेक के आख्या महाराज एक मेरी भी बेनती है। मरदानिया तैनू क्यों शंका होई दस की चाहना है कहन लगे बाबा जी एक बार अपने मुखार बिंद तो कह दियो जा मरदानिया तैनू भी बख्शिया। सात संगत तुसीं भी आखो श्री वाह। बाबा जी कहन लगे मरदानिया तू सदा साडे नाल रहना गुरु का जस करना अकाल पुरख की उस्तत करदा तैनू क्यों शंका। ना बाबा जी तको ना मेरे अंदर किन्ने कौगन भरे पे डाढ़ा गुनाहगार हाँ एक बार कह दियो अपनी रसना तो जा मरदानिया तैनू बख्शिया। ते बाबा जी ने अगो पता की जवाब दिता कहन लगे अच्छा मरदानिया अज तू अपने औगना ते झात मारी है ना जा तैनू बख्शिया तेरी इक्की कुला बख्शिया फिर आखो एक श्री वाह। सत सहुरियां दी सत नानक दी सत दादकियां दी तेरी इक्की कुला बख्शिया। ते बाबा जी समत दिया करते सन भाई गुरु नानक दे दर ते आके मन करके तन करके ढह के जोदड़ी करिया करो सच्चे पातशाह साडे गुनाह बख्श लो। सो प्यारी सत संगत दास नूं
एक महीने दे लगभग आप दे चरणा च सेवा करदिया हो गया, दो दिन होर बाकी हैं तुहाडे चरण धूड़ लैनी है, असीस बख्शियो, अरदास करो सतगुर सच्चे पातशाह मेहर भरिया असीस ते हथ रख के सेवा लैंदे रहन। आओ पंक्तियां पढ़ के एक शब्द 5 मिनट का होर पढ़ के समाप्ति करांगे।

प्रभु पर उपकारी पूर्ण कल दिन तारी जो सतगुरु जी साडे ते हर पल हल स्वास नाल साडे ते कृपा कर रहे हैं, सानू अमोलक मनुखा जीवन बख्शिया है, संसार दियां सारियां दातां बख्शियां हैं, ये साडे ते सतगुरु जी दे पर उपकार हैं। सो सतगुरु जी दे चरणां च नेता प्रति अरदास करिए पातशाह, जिथे आप जी ने अमोलक जीवन ने सारियां दातां बख्शियां हैं उत्थे आप जी कृपा करके नाम दियां दातां बख्शो, साडी चोरी विच बंदगी दी दात पाओ तां जो साडा जीवन सफल हो सके। सो महापुरखां दी याद विच अखंड पाठ साहिब आरंभ होए हैं और जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है, श्रद्धा भावना दे नाल महापुरखां दी यादां विच जुड़े हैं। सो महापुरख भी जिवें सतगुरु जी दा सुभाव हुंदा है परउपकार वाला, इस तरह ही महापुरखां दा हुंदा है जिन्हां ने बंदगी कीती है उन्हां दे अंदर दया आ जाती है और सदा ही दया विच रहिंदे हन, हलीमी विच रहिंदे हन, प्यारां विच रहिंदे हन। और पातशाह जी दी वडियाई है, सो आपां आउण वाले दीवानां विच भी वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। सो ऐतवार तक आप जी दे चरणां विच सतगुरु जी ने सानू अंजल बख्शिश किया है, कीर्तन की सेवा लैके आए हैं, आप संतां ने बहुत असीसां बख्शियां, आप प्यार विच जुड़दे हो और लंबे समय तक बैठते हो सतगुरु जी की हजूरी विच। ये लेखे विच कड़ियां हैं, ये स्वास लेखे विच हैं जिहड़ी सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप लै रहे हैं। हाँ आओ प्यार दे नाल दो दिन होर हाज रही है, आप जी ने

हुआ, कग्गे कर कर फिरे तो मुड़े दद्दाय धान ना तुदलया पपे पा न पवे मुड़े परपंच तो पलचराहया सच्चे आप खुआयो मुड़े ये सिर तेरा लेख पया पब्बे पवजल डूबो मुड़े।

मंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम विनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राति राम प्रभ प्रेम राति हर विनंती नाम हर का सुख वसै तो गुण बचन ता प्रभ जन गुण वस अवगुण नसै तुट बाधक दिल रह न साका कहन सुन ना तीजिया

वर्णन जड़या रस मोल अपार राम मोल मोल सकर टोलो प्रभावेता मंद पली एक संग हर कह कर रलिया हो पुकारी दर खली करण कर्ण समरस श्री तर आप कार सारे नानक नजरी तन सुहागण सबद अब सा तारे हम कर साचा सोहरड़ा प्रपायड़ा मिता राम राव रंग रचड़िया मन लियड़ा देता राम अपना मन दिया हर वर लिया जो पावे त्यों रावे तन मन फिर आ गए शब्द सुभाग।

अंधरत मन स्वर के सुन मंडल कर पाया आदि पुरख परम पर प्यारा सदगुर लख लखाया आसन बसन थे नारायण तित मन राता विचारे नानक नाम रत बैरागी अनुरचनकारे तगम तित अगम पुर कौखित जाइये राम सच संजम सार गुणा गुर शब्द कमाइये राम सच शब्द कमाइये निर्खर जाइये पाइये गुणी निदाना ते साखा मूल पत नाय डाले सिर सवना परदाना जब तब कर कर संजम साके अठ निगरा नहीं पाइये नानी सहज मिले जगदीवन सगुरु भुज बजाये गुर सागर रतनागर तित रतन कनेरे राम कर मंजन सबत सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नाय जा प्रपाय मिल पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिख्या तज सच नाम उतारे हमें लोभ लहर लाभ थाके पाए दीन दयाला नान गुरु समान तीर्थ नहीं कोई सच है गुरु गोबाला हों बन बनो देख रही तृण देख सबाया राम त्रे पवनो तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तुम तिरथिया तुझ समाना समान को नाही तुम दाता सब जाचक तेरे तुत बिन के सलाही अणम ज्ञा जान दिजे दाते तेरे भगत परे भंडारा राम ना बिन मुक्त न होए नानक है विचारा समहला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहिब वाद पुरख अपरम पर उतारे राम अगम गोचर अपर अपारा अपार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है पियो सी अवर झूठा सब मानो करम धर्म के सार न जाने सुरत मुखत क्यों पाइये नानक।

तपाई सत चतराय संग न संपैनारे सायर के पुत्रे पर हत्या के चरण तले विचारे अलपुरख चल दिखाया जय देखा चय सोई नानक हर के भक्त न छोटो सजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साय सुमाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करने सारे धार सच सचारो आमण जावन ठाकर हाय गुरु तत विचारो साजन मीत सो जान सका तू सच मिलै वड्याई नानक नाम रतन बरगासिया असी गुरमत पाई सच अंजन अंजन सा निरंजन राता राम मान तन राब रहा जग जीवन दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सज मिले में लाया सा सवा संतां के संगत नजर प्रभु सुख पाया हर के भगत रत बैरागे चुके मोदा प्यासा नानक में मार पतिने बिरले दास उदासा रागा समहला पहला चंत कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तू सबने थाई जिते हो जाई साचा सृजन हार दियो सबने कर दाता करम विधाता दुख विसारण हार दियो दुख विसारण हार स्वामी के तदा का होवे कोट कोटंतर पापा करे एक कड़ी में कोवे हंस से हंसा भग से भगा कर कर करे विचार दियो तू सबने थाई जिते हो जाई साचा सृजन हार दियो जिन एक मन ते आयातन सुख पाया ते बिरले संसार दियो तेने जम नेड़न आवे गुर शब्द कमावे कब न आवे हार दियो ते कब है न हारे हर हर गुण सारे तेने जम नेड़न आवे जम

राम श्री मैं गुरु पुछया अपना सचा बेचारी राम विचार सतगुरु मुझे पुछया भवर बेली रात सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तामन तात्यो जम मग बादा खाए छोटा शब्द बिन बेतालिया सच कहे नानक चेतरे मन मर भवरा कालिया मेरे जी अड़िया पर देसी आगत भव है जंजाले जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की साचा साहेब मन वसै की फसै जमजाले राम मछली वे चुने नैन रुने जाल बदक पाया संसार माया मोह मिठा अंत परम चुकाया भगत कर जित लाए हरसों छोड़ मनो अंदेसिया सच कहे नानक चेतरे मन जी अड़िया पर देसिया नदियां वा विचुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विच परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जन चेतिया प्रणाम हर के परम फूले पचे मुगदया चेतिया हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताई रुनिया सच कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विचुनिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला तीजा चंद कर पहला हम करे साचा सोहेला सच सब सुहाया राम तन बेर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभु आप मिलाया सच मन वसाया कामन सजे माती गुरु शब्द सिगारे सच सुवारे सदारा बे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कौ नानक गुरु शब्द सुवारी सफल्यो जन्म सुभाया दू जड़ा है पा कामन परम भोली हर वर न पाए राम कामन गुण नाई बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मन के आने

अंतर शब्द मिले सहजे तब्त बजाई राम शब्द शब्द बजाई अंतर शांति आई सहजे राख्या मिल प्रीतम अपने सुधा रंग माने सच शब्द सुभा पड़ पंडित मुनि थाके भेखे मुक्त न भाई

ना गुरु प्रगट होए सगुर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम जड़िया दुतिया भाव चुकाया यो कहे नानक तन सो वेला जित मैं सतगुरु मिलया सो सोच ते आया एक जंत परम भुले तिन साया भुलाए दूजे पाए फिरे हम में कर्म कमाए तिन साया भुलाए कुमार्ग पाए तिन का किस न वसाही तिनके गाते अवगत तू है जाने जिन रचन रचाए हुकम तेरा खरा पारा गुरु में किसे बुझाए यो कह नानक आए जंत विचारे जा तो

रंग को सांब लिखाया खिन पूरब खिन पच्छम चाय ज्यो चक कुमार पवाया दुख खावे दुख संचय भोगे दुख की बिरद बधाई नानक विखम सोहेला तरिया जा आवे गुरसरण आई मेरा ठाकुर ठाकुर निकागमता राम हर पूंजी चाहे मेरे सगुरु सहा राम हर पूंजी चाहे नाम विसाए गुण गावे गुण पावे नींद भूख सपरवर त्यागी सुन सुन समावे बण जारे पाते आवे लाहा हर नाम ल जाहे नानक मन तन अर्प

स्वरूप न रेख्या गाय राम राम रव्या कटे अंतर सतना भूख गवाय मंथन शीतल श्रृगार सब हुआ गुरुमत राम प्रगासा नान।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन हो सो भला, प्रभु कै सिमरन सफल फला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरा मुचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु कै सिमरन सब के सुजा, प्रभु कै सिमरन ना ही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत ना अमृत माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तन मनते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरनते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तन सदबलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन कहो प्रभ मया, नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरनी चौं कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर दुख पंजना कटकट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु सात अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय, जय महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चल, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरा, हर को नाम कोट पाप पर हरा, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद न पर, हर का नाम जपत न सुतरा, अनक माया रंग तिखना बुझावे।

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मंदर रंग रते रंग एकाय, नानक जन के बिरत विवेकाय, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का

गुण जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप गर्त नबेरा किसे दूर जनाब किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानम सगल ते रहत सब गर जाने आत्म की रहत जिस भावित सिलय लड़दाए थान धनंदर रया समाए। सो सेवक जिस कृपा गरी निमख निमख जप नान कर।

बलबल जाइय ब्रह्मज्ञानी का खोजे में सर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथया ना जाय अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीवन मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ब्रहात ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी स्वरूप उरतारे जो अंतर नाम सर्व में पिख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्स पारुत्र रूप न वेख नेत्र साध की टहल संसंहेत करना सुने गाहू की निंदा सबते जाने आप जो मंदा गुरु प्रसाद विखिया पर हर मन की बास न मनते ठर इंद्री जित पंच दोखते रहत नानकूट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस सुप्रसन्न विषिन की माया ते हुए पिन कर्म कर तो वह ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बाशे केवल भगत कीर्तन संग राचा मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ अपने नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत भाव भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंत बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खो वै तस भगवती की मातूतम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र अरबे बिशन प्रीत अर्गे चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है सोद है राम नाम सारस पीवा है

नानुक सुपंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे गौ नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सा संग भावे जन को कर कृपांतर उतारे पास ब्रेत मुक्त पाथर को तारे सर्व रोग का औखत नाम कल्याण मंगल गुण गाम काहू जुगत के तेना पाइय धर्म नानुक सुमिल।

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरूपाप सा मीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़कर गहो नाम अरबथ ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उठता में सो तन हर सेवा ते पाम है जिस सुकुर्द बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरनी अनुग पावना अनुग पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दर गए परमान मन प्रबुद्ध हर कह नाए दैद स्थापित आवे।

ठाए तागो बिघन न लागे कोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पावन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म बरगास तिदगर जाए बसे बनासी कहो नानक काटी जम्फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेब आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो अमल लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना क्या लपटा मैं मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इनते तुम इनते कहो तुम कमन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बाजारी जिंदी ए तुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातु ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हार उचित चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के कल बिख जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सतर को नाओ सह सुभाए नान गुन गाओ गुन गावत निरुतर समैल बिन सजाए होमै बिखफैल होए अजंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम समाल शाड सियानम सगरी मना सा संग पावे सच तना हर पुंजी संग करो व्यवहार यहाँ सुख दरगाह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एकसके गुण गाव अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्य प्रव्याप अनक विस्तार एक दे भय एक रात पराशद गाए मंत्र अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक जाता सलोक फेरत फेरत प्रभ आया पर्या तव शरणाए नानक की प्रभेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान।

संग अगन सागर तरहो हर तन के परले हो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साधगे बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंत करे प्रभु।

की सेव आल झंझाल बिगाड़ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभुतारी नानक निभी खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर जीत सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान। सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान। हर तन खाट चले जन सोहे नानक जिसे प्राप्त होए केम सा दृद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे ता इक न चले नाल केव सचियार होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई

लै फिर देह। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट।

निरंकार असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

तारे, गाभ खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा।

प्रपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज हृदय स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज हृदय स्वरं परम विद्धे नमो सहत्रपाने नमो अस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुग

उपजय विण सहज सहसा न जाय नह जाय सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जीओ मलीन है किद संजम धोता जाय मन धोवो शब्द लागू हर सियो रह हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय ए सहसा में जाय जीह मैले बारह निर्मल बारह निर्मल जीह ता मैले तिनी जन्म जीव ए हारिया

बन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम में ज्योत रखी ता तू जग में आया, हर ज्योत रखी तुद ता तू जग में आया। हर आपे माता पे पिता जने जी ओ पाए जग दिखाए।

सिद्ध चौरासी माया में केला छे जड़े नाथ ने चौरासी सिद्ध ने नौ नाथ ने छे जाति ने भी माया दे विच गलतान ने। ता महाराज कहिंदे ने इत्थों तक साहब जी ने कह दिता जो जो संसार विच दिस रिहा माया दा रूप हो गया।

प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जीवा देहो मेरे प्यारे मुख हर अराधे मेरा राम हर अराधे जा पंथ साधे दुख ना व्यापे कोई जल थल मई हल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई भरम मोह बिकार नाठे प्रभ नेरे हूं ते नेरा नानको प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखै दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए बनासी राम सुन सुने मंदर मल होवे कटिए जम कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर सबनासी सगल मंगल सुग्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सह ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुरमत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अबनासी।

आवे जाए। धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन किंदी इच्छ जाए। शस्त्र सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया। नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा। सलोक महला तीजा। सूहे वे सो दुहागनी पर फिर रावण जाए। फिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए। मिठा करके खाया बहु साध वध्या रोग सुध पतार। हर छोड़िया फिर लगा जाए वजोग गुरमुख होवे सो पलटिया। हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया। हर नामा और तार आज्ञाकारी सदा सुहागन आप मेली करतार। नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागन नार। महला तीजा सुही मन मानिए सो सुहा सो सहो सदा संभाल। नानक जन्म सवारे अपना कुल भी छुट्टी नाल पौड़ी। आपे तख्त रचाए ओन आकाश पाताला। हुकमे धरती साजी अन सची धर्मशाला। आप उपाए खुपाएंदा सचे दीन दयाला। सबना रिजक संभाल तेरा हुक्म निराला। आपे आप वरदा आपे प्रत।

सचे आपे एक दूजे भाए खुवाए नहुमे विच व्यापे हो मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संतापे जिस आप बजाए सो बुझसी जिस आप बजाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल रचायन सा वरते आपे। श्लोक महला पहला। चोरा यारा रंडिया कुटनिया दी बाण वेदना की दोस्ती वेदना का खान सिफती सारना जाननी सदा वसे सहता।

पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख उतर सुपार। महला पहला, सबदे साधन आयो नाम नाल को प्यार, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। नानक पै किरत कुंभावना कोई ना मिटन हार पौड़ी, जे प्रभ सलाहे अपना सो सोभा पाए। हउमे विचों दूर कर सच मन वसाए, सच बाणी गुण उचरे सच्चा सुख पाए। मेर पया चरी विछुनिया गुरपुरख मिलाए, मन मैला इव सुध है अरना।

जाति किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह नवाज सुराए गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा धन धन सो जन पुरख सुभागा इति उत जन सदा सुहेले जन।

हाथ ना लाए को सुंबड़े जल जासी ढोला रहा क्योंकि आप ही ने बदली सह केरे बोला दुदा थनी ने आवी सिर हो ना मेला कहे फरीद सहेलियो साहु वाले सी अंश जल सी डुमना ऐ तन ढेरी थी सी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति आजूनी सहभंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौक देख कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमर बढ़ाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा दे बजाई जैसे सच में रहो रजाई।

तेरी वडियाई एते कुकरहौ बेगाना पौंका इस तन ताई भगतीन नानक जे होएगा तां कसमे नाउ न जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर घटी तीर्थ ना आवे सब मेरे प्राण बसते बौड़ जन मनावा मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई राग मैं गुजर लाके पर चिंता करो हमारी। जल थल मई अल पर पुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी। मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबां गुण गावा नित तेरे जी जनसा सरन तुम्हारी सर्ब चिंतत पासे जोदत भावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर

धन्यवाद। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए रोग गए सगले सुख पाए दुगुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जीवन प्रवान रहो अकात कथा अमृत प्रभानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल माला पंजवा सांत पाई गुर सतगुर पूरे सुख बजे बाजे अनहद तूरे राव ताप संपाता ताप पाप संताप विनाश हर सिमरता खिल बे

दिन दिन छिजता बिकार करत आहोद फाही फाथा जम कै जाल तेरी शरण प्रव दीन दयाला मह महाबिकम सागर अत भारी उदरो साधु संगर वाला रहाव प्रभ सुखदाते सम्राट स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल ब्रह्म के बंधन काटो परमेसर नानके प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेसर अपना बिरद समारिया साध जना हुए कृपाला बिगसे सब परवारिया कारज सतगुर आप सवारिया बड़ी आरजा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण विचारिया वन त्रण त्रै भवन हरिया होए सगले जी असाधारिया मन इथे नानक फल पाए पूर्ण इच पुजारिया बिलावल महला पंजवा जैसी उपर होवत कदया।

काहे जलो क्रोधी दास रेन सोई हुआ जे समस्त कर्मा कौ नानक बंधन छुटे सतगुर की सरनाम लावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतर गीता अंदले त्रिपवन सूजिया गुर भेट पुनीता मेमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट आगा रे निर्मल भय चीता।

दर्शनी शनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जे सिखां दा मान नीवां मत उच्ची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु आपने पहुंदे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब समूह

धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च शोभायमान सत्कार योग साध संगत जी सानू गुरु साहब की बख्शी दात फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग साध संगत जी, बड़ा खुशी का मौका है कि इस गुरुद्वारा साहब फ्री माउंट विच मैनेजमेंट ने टाइम दे लिहाज नाल आनंद कारज की रसम पूरी की है। दास बॉम्बे का निवासी है ते रोमी सबरवाल जी का मैं मामा लगना हाँ। तो जिस तरह उन्होंने आदेश होया है, दास बच्चों नू सिर्फ एको ही गल कहना चाहता है, जेड़े बच्चे भी इतों तक पहुँच जाते हैं यूएस में आके कारपोरेट कंपनी काम करते हैं, टॉप लेवल पर काम करते हैं, उन्होंने कोई कहने ते समझाण की लोड़ नहीं है। पर कुछ ये जे मंत्र होंदे ने जड़े जिंदगी बहुत कम आते ने। मैं बच्चों नू यही कहूँगा, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, नेगेटिव गल्लां बिल्कुल दिमाग विच ना लियाओ। एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, प्राइड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तो जरा बच के रहो। तो सब तो जरूरी चीज़ है पेशेंस रखो, सबर। टाइम दे लिहाज नाल सब चीज़ ठीक हो जाती है। किसी तरह के भी रिलेशन होन, वो टाइम पा के आपे ठीक हो जाते हैं। दोए परिवारों विच मेल जोल, इज्जत मान, सत्कार हमेशा बना के रखो। मिठा बोलो तो किसी नू कोई शिकायत का मौका ना दो। ये तुहान हमेशा जिंदगी कम आएगा। तो जदों भी किसी काम वास्ते बाहर जाओ, गुरु अगे अरदास करके निकलो, छोटी अरदास करो, वाहेगुरु का सहारा लेके चलो, तुहान जिंदगी हमेशा कामयाबी मिलेगी। मैं इस करके, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे ने सारे, अमेरिका सारी संगत पढ़ी लिखी है, तो ज़्यादा कुछ कहने की लोड़ नहीं है। इसे करके मैं दोए परिवारों नू लख लख वधाइयां इस आनंद कारज की देना हाँ। तो नाले जिस तरह आनंद कारज संपूर्ण किया गया है वो काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा साहब की मैनेजिंग कमेटी नू भी मैं तहे दिल तो धन्यवादी हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नहीं होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी को कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो परवान रहो, गुर चढ़ी जा कामन लागे, दुख दर्द प्रंता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुरु पर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने आल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख न व्यापे, गुर का सेवक दस जापे, गुर की महिमा कथन जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाये, कोना न जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गौण महल्ला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख पेयो, सर्व पूज चरण गुर से हो, गुर वरनाई मैं थाओ, अंदिन जप्यो गुरु गुर नाओ राहो, गुर मेरा ज्ञान गुर दे ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहे तारे पपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का सपन मेटे कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गुण महल्ला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सवरे हो समाये, संजना मिल बोलो राम, सत्य निर्मल पूरन काम रहो, राम राम तन संच भंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम ईश्वर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिव लाए, राम राम जब निर्मल पे, जन्म जन्म के कलवे गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचर राम पे पार उतारे, सत्य ऊच राम प्रगास, निष्बास जप नानक दास, गौण महल्ला पंजवा, उनको खसम की नीठा खारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का मैं न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार राहो, जगत मास जगत पास ते लेते दान, गोविंद भगत को करे सलाम, लूट ले साकत पद खोवे, साजना पग मल मल तोवे, पंच पूजन एक माए, उत्पज खेल कर जगत वे आए, तीन गुणा के संग रच ब्रसे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे, कर कृपा जन लिए छदाए, जिसके से तिन रखे हटाए, को नानक भगत प्रसार, बिन भक्ति सब होए खुआर, गौण महल्ला पंजवा, काल क्लेश मिटे हनाए, दुख बिन से सुख की नो ठाओ, जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जप जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे राहो, गुर के चरण हृदय उतारे, अगन सागर ते उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपार, प्रभ से लागी सहस माद, थान थन अंतर एको स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, कर कृपा जाको मत दे, आठ पैर प्रभ का नाव ले, जाके अंतर वसे प्रभाव, ताके हृदय होय प्रगास, भक्त पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिये, गोंड महल्ला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध स्तंते मार, होय रही है सगल की रीना, कटकट रमैया समय चीना, इन विद्रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद राव, आठ पैर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुहाओ, तज विमान जान प्रभ संग, सात प्रसाद हर स्यो मन रंग, जिंतु किया तिसको जान, आगे धर गए पावे मान, मंत्र निर्मल होए निहार, रसना नाम जपत गोपाल, कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन रंगे, साधु की मन मंगेर वाला, हो दयाल देहो प्रदान, नानक जप जीवे प्रभ नाम, गौण महल्ला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंधन करतार, प्रभ की शरण गई सत्या, गुरु सुप्रसन्न पये वटपाग, आठ पैर गाये गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद राहो, हर गुण रमत पे आनंद, पार ब्रह्म पूरन बक्सांद, कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिलाए, करम तरम ए तत्त ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम, सागर तर बोहित प्रभ चरण, अंतर जमी प्रभ कारण।

0: काजे
1: नाम रंग सर सुख होए
0: बड़भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावण आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावण करने

0: मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: ज्यों बाढ़ तेरे खेत माए दोहेला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सत जिथे आ कहत।

0: जाने अपनी मित कत
1: किसे सुकरने हार
0: अवरना बोझ कत बेचार
1: करते कीमत ना जाने किया
0: जोते से पावे सो वर्तिया।

0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कस नान जनावे
1: हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन वेचे सतगुर के पास।

0: जगन्नाथ निरंजन गोचर गादे
1: कौन छुड़े कौन बंधन बांधे
0: आपने आप आप ही चर्जा
1: नानक आपन रूप आप ही परजा
0: जय निर्मल

नाम स रतन जप सार लाभ लो बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मन मुख अंधा मुक्त गवार लाहे कारण आया जाग हो।

नित नीत चिंत दिशा सब कोय चित एकता सुकोय चित वसरा चय हरनाय मुक्त पया पश्य कर जाए छिजे दे खुले एक घंट छिया नित देखें जग हं

बीस इक्कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चोर मरे देखै परमाद जन्म मुवे नहीं जीवन आसा आय चले पै आस निरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल ना चाम पै हर गुण गाए पाई नव निद हर कह नाए आपे दे वैसा सुभाए ज्ञानो बोले आपो बुझे ज्ञानो बोले आपे बुझे आपे समझे आपे सुझे गुरु का कह अंक समावे निर्मल सुचे सच पावे गुरु क्या सागर रत्नी नहीं तोल लाल पदार्थ सच आ खोट गुर कया साकार कमावो गुर के करने का एताव नानक गुरु में साज समावो टूटे ने हो के बोले सही टूटे बांग दोहु देश गही टूट पर हित गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाटी टोल टूटे घंट पड़े विचार गुर सबदी कर कार्य सार लाहा साथ न आवे तोटा त्रिपवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाकुर मनवा रखो ठाए ठैक मुई अवगण पछताए ठाकुर एक सवाई नार बोते भेस करे कुड़ियार पार कर जाते ठाकुर हाई मैल बुलाई ठाक न पाई शब्द सुवारी सासु प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत है सकी फाटे चीर सिगार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिनते डर डरप मोई कर अपने डिठी कंत सुजान डर राखिया गुर अपने निरपना बखान डूगर वास्तिका कणी जाप देखा नहीं दूर तिखा निवारी सौद मन अमृत पिया भरपूर दे दे आखा सब कोई जे पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवार सोए टंडोलत ढूंढत हो फिरी टह टह पवन करार पारे टह तह टह पै ओले निकसे पार अमरा जाति हर मिले तिनके हों बल जाओ तिनकी धूड़ा कुलिए संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारा जाओ जो उसारे सो ढाए से तिस बिन अवर ना कोय गुरप्रसाद तिस संभला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गए ना को हुआ ना होगा आवण जान बेगुची है दुविधा व्यापै रोग ना व्यूण आदमी कलर कंध गिरंत विण

रतन रात दिन रते दिन सुरया आकार गुरमुख बेअंत त्याये अंत न पैरावार डाढ़ रूढ़ा हर दियो सोई तेस बिन राधा बरना कोई डाढ़े गारुड़ तुम सुनो हर वसे मन माहे गुरप्रसाद अर पाइये।

पाए, सावधम वह लेखरा तू के मां सच सुख पाए, खर्च खरा धन ध्यान तू आप वसै शरीर, मन तन मुख जप सदा गुण अंतर मन धीर, होमे खपे खपाए सी बीजो वत विकार, जंतु पाए विच पायन करता लग अपार, सृष्ट प्यो न जाने कोए, सृष्ट प्यो न जाने कोए, सृष्टा करे सोने चो होए, संपे को ईश्वर त्याई है, संपै पूर्व लिखे की पाई है, संपै कारण चाकर चोर, संपै साथ ना चाल होर, बिन साचे

नानक संत मिले सच पाइए सच पाए जस लो क्या पविए सच सुचा होए सच सद बिन मुक्त न कोई राहो कवन तुम्हें क्या नाव तुम्हारा कौन मार कौन स्वा

0: नानक बोले सुन बै रागी क्या तुम्हारा राहो। घट घट बैस निरंतर रहिए चल सतगुरु पाए सह दे आए हुक्म सदाए नानक सदा रजाए आसन बैसन थे नारायण ऐसे गुरमत पाए। गुरमुख बोधय पछाण सच सच समाए दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पार चरपट बोले और दो नानक देव सच्चा बिचारो। आपे आखे आपे समझे तुझ क्या उत्तर दीजे साच कहो हो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा इन साणे सुरत शब्द पव सागर तरिये नानक नाम बकाने रहे कांत एको मन वस्या। साचा आसा माय निरासो अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका अंदासो। सुन स्वामी अरदास तुम्हारी पूछो साच बिचारो रोशना की जय उत्तर दीजे क्यों पाइये गुरुद्वारो। यो मन चलता सच कर बैसे नानक नाम आधारो आपे मेल मिलाए करता लागे सच प्यारो। हाटी बाटी रह निराले रुख बिरख दयाने कंध
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ गौड़ी सुखमणी महला पंजवा सलोका।

ऊच बहुत सियान प जम का पहो ब्यापे अनक जतन कर त्रिसरणा तरा पै भीख अनेक गरणी बुझा कोट्यो पाव दरगह नहीं सिजा।

सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जास सुंदरसन बखानी सगल थान त्यो तुम थान नानक जय कट वसे हर नाम सलोक निर्गुण आरे आने सो ब्रभ सदा संवाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया।

मिथ्या राथस्थ यसव वस्त्रा मिथ्या रंग संगमय पिखस्ता मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु ऊपर करत गुमान अस्त्र भक्त साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै मिथ्या नेत्र पेखता पर तर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद

साधु कै संग नरक पर हरै, साधु कै संग इहा उहा सुहेला, सत्संग बिछरतर मेला, जो इच्छे सोई फल पावै, साधु कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरे साध सुन रसै, साध कै संग सुनो वरणाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै।

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी

है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मनता, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जानय ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

का और तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पिख भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारी नानक हुआ परसा सगल निस्तारे अष्टपदी।

मन ते बिन से सगला परम ओंकार पूजे सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की माति उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हिरदे वासावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

का जय। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावण आपे आप, सदा सदा नानक कर जाप। करन करावण कर

दूर सब हुंका सांग। भुजा देखे करे बबेक, आप है एक आप है अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक सदी रिया समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछु सिखावे करने हार, उसते पिन कहो किछ होए थान थनंतर एकै सोए। अपने चलत आप करने हार।

संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत सांग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जून पाए, संत का दुखन त्रिद जून किरमाए। संतन का दुखन तृष्णा में जलाए।

दुखिया हर दीना। संत के निंदक को सर्ब रोगा, संत के निंदक को सदा बिजोगा, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता सुखा पियोए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डाण लागे, संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा विकारी।

सब संग चरण चलो मार गो बेंदा मिटे पाप जपिए हर बेंदा कर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगे नानकी उज्जल मथा बटपाकी ते जन जग माए सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सोजी जानाए नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपने आप सुजा तिसकी जानो तृष्णा बुझा सा संग हर जस कायत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनदन कीर्तन केवल बखयान ग्रिस्त मै सोई निर्वाण एक ही ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे ना लागे दुख जिसको हर परब मन चित आवे सो संसेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक किसते डराए जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदता सोदता सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब बूझया जब देखो तब सब किछ मूला नानक सो सूखम सोई असथूला न किछ जन्मै न किछ मरै अपन चलता पी करै आवन जावन दृष्टि दृष्टा गया कारी धारी सब सृष्टा

निर्मले करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा के मन गुर की प्रतीता ते जन अवेर प्रभ चीता भगत भगत सुनिए ते लोहे जा के हृदय को है।

सो परसा नष्ट पदी अविनाशी ब्राह्मण में राख मानो की तुम प्रीत आते परे नाय किच को सर्व निरंतर एको सो आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गिर सो जाना पार ब्रह्म।

सोई होगा। हरण भरण जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर, अनंत रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर तांके। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीसरा गृहस्थ में भोगी, त्याग त्याग भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न

गुण कह एक न जानु आड़ पर प्रभ से हजूरे कौ नानक से ही जन पूरे। मान मेरे तिन की ओट लेहे मान तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता। तिस की शरण सर्व सुख पावे तिस कै दर्श सब पाप मिटावे अवर से आन।

नानक जिस भावै तिस लहे मलाय, जे बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन भवेक। काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमराय। सत बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, हो रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरख का।

मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंता, मन तन जाप एक भगवंता, एको एक कर आप, पूर्ण पूर प्राभ्याप, अनक विस्तार एक ते भय राज प्राजित गए। मन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोका।

राष्ट्रपति जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव वरनाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सा प्रभ तुम्हें त्यावो चरण

गुरप्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरा जे बेखते काड जन्म जन्म का टूटा गाड गुरपुरे ताते बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक मान त्याग जप वरनाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो।

सुभाव नेत्रों पे एक दर सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगजना के मन तन रंग बिरला को पावे सांग एक बस्त दीजे कर मैया गुर प्रसाद नाम जप लया।